0: देखो जून 12
1: अनुगानी है तू एग
0: हाँ कद तू एग जिम्बे पाउना नुसिकर यंग निमन बाउ पर थे
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.